0: इस टाइम चेक,
1: इस समय सूचक का साथ मा
2: दक्षिण कोरिया मा पढ़ाई र रोजगारी को उत्कृष्ट परामर्श केंद्र गोल्डन इमिनेंट इंटरनेशनल प्राली भरतपुर चितवन सीएमसी हॉस्पिटल को ठीक अगाड़ी संपर्क 0556 5563 5855 7071 र 9855 7073
3: 24 घंटा इमरजेंसी सेवा विशेषज्ञ चिकित्सक बाट मेडिकल

0: हेपिन के मेरो छोरालाई
1: गीता हेप्न पाइन्छ
0: हो त नि बाडिस के
2: हल्का ग्यास
0: उज्जा मुर्दार
3: तिमीलाई
4: हा राम्रो मान्छे।